0: इतना दिस्तमा
1: इतना उसे पूरा करना जो किसी का काम नहीं
2: जाएगा एथनिस डांस सबगेने एंड ये लोग स्नैक्सिंग एथनिस डांस सबगेने

0: Now, therefore, the General Assembly proclaims this Universal Declaration of Human Rights as a common standard of achievement for all peoples and all nations.
1: और फिर भेड़िये ने मेमने से कहा, मैं तुम्हें खा जाऊंगा।
2: गले में खिंच खिंच विक्स लो। विक्स में 6 औषधि तत्व हैं जो खिंचखिच हटाएं। तो जब भी गले में खिंच खिंच हो, विक्स लो।
3: गले में खिंच खिंच गले में